0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं सुनते हैं एक भक्ति रचना, इसका गीत संगीत और स्वर है हरिओम शरण जी का।

0: श्रोताओं सुनते हैं रविशंकर शर्मा जी के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी की गीत रचना। स्वर है मोहम्मद रफी और आशा भोसले।
1: श्री राम चंद्र आश्रित पारिजात है,

श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना। इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और स्वर है पंडित राजन और साजन मिश्रा जी का।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं सुनते हैं एक भक्ति रचना, इसका गीत संगीत और स्वर है हरिओम शरण जी का।

0: श्रोताओं सुनते हैं रविशंकर शर्मा जी के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी की गीत रचना। स्वर है मोहम्मद रफी और आशा भोसले।
1: श्री राम चंद्र आश्रित पारिजात है,

श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना। इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और स्वर है पंडित राजन और साजन मिश्रा जी का।